0: आज की निलादी गुदु निच्छा आत्मिकी ज्याजो स्पार्क माइ फेथ जुगु विश्वास के चमक हया बिउ छिगु ज छिना चुनमा जय मसी जोसलपाजी अमृता महर्जन स्पार्क माइ फेथ यु जीवन या छिन श्रृंखला भाग 37 के छिसक सितन लसकु छि गुली आज चाहिँ पुगु धका छिसुला सिगुली विशेष ख जीवी सुख धका जीवी तस्क उत्साही ड्रीमा छादासा परमेश्वर झित अजुसाय पुगु देका दिगुदु अले मेबी मनुदेश झिगु बारे छुदाई धका सोया परमेश्वर छु धयारी धका झिस विश्वास आएगु तस्क महत्वपूर्ण जुई यो कु यी झिस मेबी निगु विचाई निगु व झिस थ त छु विचायना चुना गथे ताका चुना धका उम्स हे झिगु बारे इम्स कोसी बी तर झिगु नीति महत्व दुगु विचा दैगु हे परमेश्वर ख वे क स्वर्ग व पृथ्वी आ सृष्टिकर्ता ख उके वे क झिगु बारे छु विचा यै वा मेपिन छु विचा यै वा वो स्वयान महत्वपूर्ण जुइमा अले परमेश्वर झिपी अजु चाहे पुपी ख धका विचा यै गलादी छगु यो पिङ्गु अध्याय दाटोटो थो मबिङ्गु यी इल बसैयाए त छिगु पापियागु नीति जी परमेश्वर बान तयादी थिए हे यीशु थ हे सिना दिल परमेश्वर जी त स्वयबले झिके छुन दोष खने मुखु वे कया न्योने झिके पिने या छुन दोष मरु कमजोरी मरु जिपी वे कया न्योने हे धर्मी ख जी त स्वयबले झिके दु छु न दोष खने मुखु वे कया न्योने झिके पिने या छु न दोष मधु कमजोरी मधु जिपी वे कया न्योने धर्मी ख यो पी न्योने मिपी यीशु ख्रीष्ट झी त उदार याए न्यो जिपी अपराधी व पापी सिपी ख परमेश्वर जी त खिउबु थास बचेना दिन यीशु यागु यिया माध्यम वे कल जी त नापाङ्गु फुक्क पाप शुद्ध याना दिल अले वेकल झित यीशु ख्रिस्टिया न्योनी मनु देखा दिल झिस यीशु या त झिगु प्रभु धका स्वीकार याना परमेश्वर वेक या त सिपी मध्ये मका दिल धका झिगु नुगले विश्वास याना यागु छेणे झी आत्मिकी रूपमा हिलाउने आज याय मागु आत्मिकी क्षेत्रे परमेश्वर पाखे प्राप्त जुइगु ढुङ्कुगु खडिसे सहमत जुइ जिगु मनियात रूपान्तरण याय त हे ख परमेश्वर दयादिगु कथ जि हे ख धका थ त विश्वास यायगु जक्क ख मति न्यागु अध्याय झिङपेङ्गु पत्के धाटगुदु छिपि संसार या ज ख पहाडे या चोक्या दया थगु सहर या त सुनान मखङ्क सुस्काते फैमुखु छिगु बारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर धयादिगु ख थोख छि गन गन दु छि सक्ने संसारे या ज ख वैक स्वर्ग व पृथ्वी आ सृष्टिकर्ता ख अथेसा छ सुया त विश्वास याए गुल्यौ मनुदेश छिगु बारे छु धाई धका विश्वास याना दियाला वा छिगु बारे परमेश्वर छु धाल धका विश्वास याना दिया गुब्ले गुब्ले मनुदेश व युगको ख्रिस्टियन देश न छि त निरुत्साहित यागु कुत याई इम्स छि त छि बाला मजु वा छि योग्य मजु धका धाई इम्स छि त बन्नाम याइगु कुत याई यदि छि होसियार मजुल धासा इम्स छि त थ थम बामलाकु ताके इम्स छि त छि लायक मजु धका बिचा याके बरु यीशु ख्रीष्ट सिदे का दिगु ज्याया माध्यम परमेश्वर छित व जित योग्य याना दि मति न्यागु अध्याय झिन्यागु झिन्खुगु पदके धाटगुदु मत ज्याका सुनान तोफु या तै मुखु बरु कोठा न्यङ्क ज खेमा धका ट्वादे या त तया तै छिपिन मनु दिगु न्युहने थथे हे छिना छोने फेमा अले जक्क छिम्स यागु बालागु ज्याख मनुदेश खने अले स्वर्गीय चुना दिम परमेश्वर या त इम्स त धङ्की यपिनियन मेपि परमेश्वर झिगु बारे छुदाल धका झिस घोषणा यामा झिगु सहर व नगरे तस्क सतके न्यासी हुने भने झिस थ त मेपिन त खने फैगु जदका दाबियामा गर्व व साहस लिसे चिस निहोने मुना झिगु समुदाय मनुत झिगु ज च्याकेमा झि घमण्डी व अहंकारी जुगुने मुहु तर चिस सुगुने परमेश्वर झित तद द्वित देखुगु ख गुखे स्वर्गीय चोम झि अभुयात प्रशंसा यै अले वे कया माध्यम झिस मेपिनिगु नीति भिङ्गु ज्याया वे यै एफिसी निगु अध्याय यो झिगु पदके तयाकाउदु छादासा झिपे भिङ्गु ज्याया नीति ख्रिस्ट यशु पाखे सृष्टि याना तपि वे कया लाया सिप ख वे कल नापा निसे देखा तकु भिङ्गु ज्या झिगु पाखे जी फेमा धका चित तयार याना दिगु ख यो पिन्यन मिपि परमेश्वर छित देखुगु निपुण कलाया बालागु टुक्रा ख वो दक्ले तद म कलाकार ख अले झी वे कया सृष्टि ख छि सुख धका गब्ले लज्जित जुई मते छादासा परमेश्वर छि नाप लज्जित जुई मुखो वे कला छित मतिना याना दि अले वे कला छि संसारे खने देख थगु मतिना किनेमा धका इच्छा याना दि थौयागु वचन येना दिगुले शिसकसित न परमेश्वर सवाबीमा जय मसी छिमसा नकतिनी हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपु केनादीमा सोमन भिक्टर चोयादीको हसना झिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ झिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तयादी उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर 2 98 68 55 33 39 98 68 55 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसी
1: जीवन छ सबै थोक छ जीवन छैन केही पनि छैन तपाईको स्वस्थ जीवन निर्माणका लागि समर्पित किंगडम भोइस एफएम रेडियोको प्रसारण हाम्रो प्रसारण हरेक दिन बिहान 6:45 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म www.kingdomfm.com.np